जिंदगी का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी एक

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कहे।

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

0: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरजीत सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़। दोस्तों, सिक्ख्या ते रुजगार दे विच तुहानूं पता है कि असी वक् वक् जो मुद्दे ने जुड़े होए विषय दे नाल, चाहे वह काउंसलिंग होए, चाहे वह रुजगार नाल जुड़ी हुई कोई गल होवे, उहदे उत्ते आपां चर्चा करदे आ, सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां करदे आ, एजुकेशन दे उत्ते गल करदे आ। तो इस सारे प्रक्रिया दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विशा है वह आता है पेरेंटिंग, जाने कि बच्चे का पालन पोषण। सो अज इस महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़े ने पैनलिस्ट डॉक्टर भावना गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, डॉक्टर भावना गुप्ता जी को चेयरपर्सन हैं टर्न राउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसिज जलंधर, ते इस तो इलावा वो बतौर डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो काउंसलिंग दे विच बहुत सरगर्म ने, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो दे रहे ने, तो स्टूडेंट्स नूं करियर गाइडेंस दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा जिहड़ा समां जिहड़ा लगता है, बहुत योगदान है उन्हां दा। तो विशेष तौर पर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स वो ऑर्गनाइज करते हैं, तो उहदे विच मापिआं नूं किवें जिहड़ा गाइड करते हैं, ये अज आपां जाणांगे उन्हां कोलों। तो डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो जो सवाल ये आता है मन दे विच कि पेरेंटिंग की है, पालन पोषण की है, इन्हों पर कैसे डिफाइन करते हैं
1: जी? पेरेंटिंग सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए कि सब तो कॉम्प्लीकेटेड जॉब और फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग
0: जी। जी,
1: इहदा कोई निर्धारित समा नहीं है। जब तक तुसी पेरेंट्स हो, पेरेंटिंग चलती रहती है
0: जी। जी,
1: एक बच्चे नू पैदा करना, उस दियां जरूरतां पूरियां करना, और जिस तरह आपां कहने कि सारे इदां ही पलदे है
0: जी, जी।
1: ए पेरेंटिंग नहीं है, पेरेंटिंग इस तो वध के है कुछ
0: जी।
1: तुसी एक बच्चे नू ओ बनाना जो तुसी बनाना चाहते हो, उस नू टाइम देना पैंदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: उहदे लई जो एफर्ट्स लगदियां है वह सब इस पेरेंटिंग दे विच आ जांदा है
0: जी। जी जी जी, तो ये अपने आप दे विच ही उम्र भर चलन वाला
1: मापिया
0: लई जिहड़ा काम
1: है, ते
0: ये एक दिन वाला काम नहीं हैगा।
1: हां जी, हां जी,
0: इहदे उत्ते गल हो गई ते खत्म हो गई।
1: हां जी,
0: ये तो जी, पर इहदा मतलब कि इहदे लई ते फिर किवें आपां इहनां नूं डिफाइन करांगे? हर बंदे दा अपना सुभाअ है,
1: ते
0: आपो अपने रूल, आपो अपने जिहड़े तरीके नाल अपने बच्चियां नूं पालन पोषण उहनां दा करदे आ।
1: हां जी,
0: ते किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने उह सब उभर के आउंदियां ने, किस तरह आपां कहिंदे आ टाइप्स
1: इहदियां? हां जी हां जी, वैसे ते थोड़े बहुत फर्क दे नाल हर एक दा स्टाइल डिफरेंट है
0: जी,
1: पर मुख तौर ते चार पेरेंटिंग स्टाइल्स गिने गए हैं
0: जी। जी,
1: जिन्हां विचों सब तो पहला जो अपने इत्थे आम चलता है, जिसनों असीं कहने हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल वो है जिस दे विच असीं बच्चियां नूं अपना हुक्म मनन दी ही तालीम दिंदे हैं
0: जी।
1: मैं तैनूं जो कहा बस
0: ओके है।
1: हाँ,
0: ओके है,
1: जे बच्चा क्वेश्चन करता है तो सानूं लगता है कि वह अगे बोल रहा है, वो साड़ी इज्जत नहीं कर रहा
0: जी। जी जी जी,
1: ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है साडे, असी ओदे नाल रीजनिंग नहीं करदे, असी ओनू लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करदे
0: जी। जी जी,
1: और सानू ये लगदा है कि ये बच्चा साडे कहने च नहीं है जी, वो बार बार क्वेश्चन करदा है या साडे डिसीजन नू चैलेंज करदा है
0: जी। जी जी,
1: साडे कोले ओदे हर जवाब दा इक्को ही, ओदे हर सवाल दा इक्को ही जवाब हुंदा है, क्योंकि मैं क्या
0: जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये अपने आम चलदा है,
0: ये सब तो ज्यादा पॉपुलर है,
1: सब तो ज्यादा पॉपुलर है ठीक है।
0: बिल्कुल,
1: थानू सुन के किदा लग रहा है,
0: थानू
1: आपे ही चल पता चल जाएगा कि ये कितना को होना चाहिए
0: जी। जी
1: ठीक है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है जिदे विच असी नू कहने अथॉरिटेटिव स्टाइल, ये पहले जिदी मैं गल की थी अथॉरिटेरियन है
0: जी।
1: सेकंड है अथॉरिटेटिव, जेड़ा काफी हद तक बैलेंस्ड पेरेंटिंग है
0: जी। जी जी,
1: जिस दे विच असी

0: जी,
1: दैट इज
0: बिल्कुल
1: अथॉरिटेटिव। ठीक
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: एक है थर्ड जिसके बारे में गल करना चाहनी है, वो है परमिसिव पेरेंटिंग।
0: परमिसिव जी,
1: परमिसिव परमिसिव दे विच है कि तुसी छूट देती है बच्चे नू,
0: खुला ही छोड़ देता है कि जो मर्जी
1: हाँ,
0: करे।
1: तुसी उस तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत घटा ली है,
0: जी
1: कोई फर्क नहीं पैंदा, तू जो मर्जी कर।
0: जी जी जी
1: ठीक है, हर एक चीज ओनू तुसी मुहैया करांदे हो, ओदियां डिमांड्स जिहड़ियां है तुसी ये नहीं देखदे कि वो जेन्युइन है या नहीं, वो
0: बिल्कुल
1: पूरियां करना तुहानूं लगदा जरूरी है
0: जी
1: और तुसी वो बोलदा है और पूरियां कर दे हो।
0: जी जी जी
1: इस तरह की पेरेंटिंग दे विच चाइल्ड स्पॉयल हुंदा है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: आम
0: जी
1: तौर पर देखा जाता है,
0: जी जी जी
1: क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं समझाई जाती कि चीज़ा किस तरह आदि हैं, किस
0: जी
1: किन्नी डिमांड होनी चाहिए है।
0: जो उन्हें
1: ओ,
0: मुंह कड़िया
1: हाँ,
0: वो मुंह हो
1: उन्होंने ये
0: गया।
1: नहीं लगता कि जरूरत के हिसाब न चीज़ होंगी है, उन्होंने लगता जो दिल करे वो होंगी है,
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: इस तरह सीखता है। इस तरह
0: जी
1: के बच्चे फिर अगे जाके अकमुलेटिव बनते हैं, चीज़ा
0: जी
1: कट्ठियाँ कर लेनिया चाहे लोड़ हो चाहे ना।
0: बस उन्होंने जमा करी जाना है सब
1: हाँ जी, ठीक
0: कुछ।
1: है।
0: बिल्कुल
1: फिर है अन इनवॉल्व पेरेंटिंग, अन इनवॉल्व जिथे पेरेंट्स
0: जी,
1: इन्वॉल्व ही नहीं है,
0: कुछ भी नहीं कर रहे हो तो
1: फिजिकल
0: उन्होंने।
1: प्रेजेंस नहीं है,
0: जी जी जी
1: जरूरतें सारियां पूरियां हो रही हैं बच्चे दियां,
0: जी जी जी बिल्कुल, पर वो उते है नहीं।
1: उत्थे नहीं है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: वो टाइम दे रहे हैं, जे वो
0: जी
1: हैगे भी है तो वो कुछ होर कर रहे हैं,
0: जी जी जी
1: बच्चे लई
0: जी
1: नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो अपनी कुछ एक्टिविटीज दे विच इन्ने बिजी है या उन्होंने ये लगता ही नहीं कि ये जरूरी है, उन्होंने लगता है जरूरतों पूरिया करनिया ही पेरेंटिंग है,
0: जी
1: और वो
0: जी
1: सारिया जरूरतों पूरिया कर रहे हैं, और
0: बिल्कुल
1: बच्चे नू भी एक टाइम तो बाद ये लगन लग जाता है कि माँ बाप जड़े है वो जरूरतों पूरिया करन दा सोर्स है,
0: उन्हां दा होर कोई रोल नहीं,
1: वो जुड़ाव नहीं आता, एक कनेक्ट
0: बिल्कुल
1: जिन्हों असं कहने भावनात्मक जुड़ाव
0: वो नहीं
1: वो नहीं
0: बनेगा।
1: बनता
0: बिल्कुल
1: उन्होंने,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी
1: उन्होंने इन्होंने चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं होंगी कि कट्ठे बह के डिनर करना,
0: जी
1: बच्चे
0: जी
1: की गल
0: जी
1: सुनना, स्कूल च की होया, वह
0: टाइम देना
1: होमवर्क
0: उन्हां नूं।
1: देखना, इस चीज़
0: जी
1: की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये है तो बेसिकली ये चार स्टाइल है,
0: जी जी जी
1: और मैनू लगता है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है जिद्द टू वे डिस्कशन है।
0: दोनों की गल हो रही है,
1: हाँ जी,
0: दोनों
1: वो उसदे,
0: तेरा
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी
1: उत्थे कनेक्ट जुड़द है, बच्चे जुड़ते हैं,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: व्डे होके भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं,
0: जी जी
1: बजाय के बाहर कोई लभन दे कि जिद मैं दिल की गल करा, पेरेंट्स
0: बिल्कुल
1: उन्होंने दोस्त बन जाते हैं टाइम नाल।
0: जी जी
1: मेरे पर्सनल व्यू ये है कि ये ज़्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि डायलॉग तो होना चाहिए है दोवे दे विच, जे यही विच माइनस हो गया तो वो गैप बढ़ता जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो जी वैसे सब तो ज़्यादा कि पॉपुलर है आम जी जनता जी है वो इन्वॉल्व होंगी है जिद सब तो जी
1: जिहड़ा
0: पॉपुलर आप
1: आम
0: कह
1: लोग
0: लिए।
1: करते हैं,
0: जी जी जी
1: जो मेरा एक्सपीरियंस है साड़ी जनरेशन दे, जो असी जदों बच्चे सीगे,
0: जी जी
1: जदों भी मैं किसी नाल गल करदी, बहुत घट लोग है जिहड़े कहिंदे हैगे कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो पले है, अथॉरिटेरियन स्टाइल ही रहा है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अज तक भी पता नहीं शायद इंडिया का यह रहा है कि ओबीडियंस है ना जिहड़ी,
0: जी जी
1: वो ये विच ही लभी जाती है कि जो असी कहने हैं वो ये करता है, ये इसनों ओबीडियंस मन्या जाता है।
0: एक मतलब वधिया एक प्रमाण पत्र हो गया,
1: हाँ जी,
0: सर्टिफिकेट हो गया कि
1: हाँ
0: साडे
1: जी,
0: बच्चे साडे कहने च।
1: ओनू ही आज्ञाकारी किया जाता है।
0: जी जी जी
1: माँ बाप की सोच कितों आई है, उन्होंने भी अपने हालातों तो सीख्या ना, कोई
0: पीढ़ी
1: जो
0: दर पीढ़ी चल रहे
1: पीढ़ी
0: हैं।
1: दर पीढ़ी चल रहा है,
0: जी जी
1: बच्चा उस तो अलग भी सोच सकता है,
0: जी जी
1: बच्चे का
0: बिल्कुल
1: एक्सपोजर कुछ होर है,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना, पर उत्थे क्योंकि डायलॉग नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं है,
0: जी
1: रीजनिंग
0: जी
1: नहीं है,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: उसनों वो मनन ले मजबूर है वो।
0: हुक्म जड़ा है वो अटल
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, और ये तो फिर जो बच्चा है ये मैं लगता है अगे जा के वो भी अगे इसे तरह ही अपनी अगली पीढ़ी के वो सारा ट्रांसफर होंगे, सारा कुछ ही उसे तरह ही चलता रहता है।
1: ये डिपेंड कर दे करेगा, देखो
0: जी
1: जेड़े बच्चे नू हर पले लगदा रहेगा कि ये गलत हो रहा है,
0: जी जी बिल्कुल
1: हमेशा वो मन भी
0: हाँ
1: रहा है पर उन्हें यह एहसास है कि यह गलत है,
0: ये सही नहीं हो रहा।
1: वो सोचेगा कि मैं इन्हें बदल दिया,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: अपने
0: जी जी
1: बच्चों नाले ना करा,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि अब हर पेरेंट अपने बच्चे लिए बहुत लविंग होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल
1: ठीक है,
0: जी
1: जिस बच्चे की ट्यूनिंग हो गई कि यही ओबीडियंस है, ये
0: जी
1: ट्यूनिंग
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: फाइन
0: बिल्कुल
1: ट्यूनिंग, हौली
0: बिल्कुल
1: हौली हौली हौली इन्हों तुसी संस्कार को जो भी को,
0: बिल्कुल
1: ठीक है
0: जी जी
1: ना,
0: जी
1: जिस दी ट्यूनिंग हो जाती है वो यही सीख जाएगा।
0: जी बिल्कुल, ते वो जेड़ा इस चो बाहर आ गया वो थोड़ा हो सकता है डेवलप भी हो जाए
1: हाँ
0: ते
1: जी
0: नवी गल भी सोचेगा।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल ये तो वाकई सही गल है जी, ते आम आप कहने इसे लड़ी दे विच जी आप देखिए कि जे बच्चे नू ढेल दे रही
1: हाँ
0: तां
1: जी,
0: भी वो बिगड़ जाएगा,
1: हाँ
0: जे
1: जी,
0: ज़्यादा कस दिता तां भी वो गड़बड़ होएगी बहुत ज़्यादा।
1: बिल्कुल होएगी,
0: ये फिर किन्नी क सही गल होएगी कि डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का, जो आप कहने बिगड़ गए बच्चे इन्हों हूँ इदा ही काबू करना पैना है।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरिया नू तू हमेशा याद रखी, नी मेरे बेले आबाद ना होवन तू अपने बेले आबाद रखी। जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होवन तो पहला मैनू दे के थोड़ा जहर जावी।

पासे खुदाइया सबे चलिए ता एक कर्म कमाने कड़ के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमा।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारा होन जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक

0: फिर भी, पर फिर भी दर्द से तड़पती हूं फरेबी नरपिशाचों दुशासनों के अन्याय और घृणित कुकृत्यों पर मैं रुकूंगी नहीं। सब सब सब सिखाऊंगी मैं कि दुर्गा बनकर कैसे अपनी रक्षा की जाती है, अन्नपूर्णा बनकर कैसे भंडारी बना जाता है, कल्पना चावला बनकर कैसे पंख फैलाया जाता है और असीमित अंतरिक्ष को नापा जाता है। सब सब सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को, सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को।
1: अम्बाला तो बाद हूँ असि थानू फिरोजपुर लेके चलते हैं। फिरोजपुर के साडे शायर रहिंदे ने कमलदास जी। कमलदास जी बड़ी धीमी सुर दे विच रह के अपनी रचना पेश करते हैं, स्रोते उन्होंने प्यार भी देंदे ने। ते इस बार फिर वो साडे संदे दे उत्ते हाजिर हो रहे हैं। आस करते हैं पहला वांग ही उन्होंने स्रोते साडे प्यार देंगे। कमलदास शर्मा जी थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है जी।
2: लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे।

है, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने ये हरियाली

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर्दा है, लुक लुक के सौदे।

0: बनना होगा, उन्होंने बीटेक च एडमिशन मिल जाएगी, उदे लिए उन्होंने
1: ठीक है,
0: जेईई मेन्स ते एडवांस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: ओके ओके। अच्छा,
0: हाँ जी।
1: जिहड़े ये कोर्स आपां गल शुरू की पहला भी की सी भी इन्हां नूं प्राइवेट खेत्र दे विच नौकरियां मिलदियां जां सरकारी?
0: हाँ जी बिल्कुल, इतने बहुत ज्यादा स्कोप है आईटीआई का।
1: हाँ जी,
0: जेडे बच्चे आईटीआई होल्डर्स ने उन्हों का बड़ा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर च भी हैगा,
1: हाँ
0: गवर्नमेंट
1: जी,
0: सेक्टर दे विच भी हैगा, ते मोर ओवर ओहो अपना खुद का बिजनेस भी बना सकते ने।
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: इस तो इलावा विदेशों दे विच भी रोजगार काफी हैगा है आईटीआई स्टूडेंट्स दे लई।
1: अच्छा जी,
0: ते जदों आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे आं तां जिदा ही मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जिहड़ा
1: हाँ
0: साडा
1: जी,
0: मैन्युफैक्चरिंग दे विच जिहड़ियां आ गईआं चीजा, ओ सारे जिन्नियां भी कंपनीज आ गईआं साडीआं, ओहदे विच बच्चे जाके जिदा टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनर्जी, इदां दे काफी प्राइवेट सेक्टर दे विच जिहड़ियां कंपनीज काम कर रहीआं ने, उहनां दे विच काफी डिमांड हुंदी है, वेल्डर दी,
1: अच्छा जी,
0: इलेक्ट्रिशियन दी, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनर जिहड़े मैकेनिक्स है उहनां दी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग ए ट्रेड्स ने
1: अच्छा जी,
0: जिन्हां दी आईटीआई दे प्राइवेट सेक्टर च बड़ी डिमांड रहिंदी है।
1: ठीक है,
0: ते ए कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस ते हुंदा, ते प्लस उहनां दी जिहड़ी हैंड स्किल्स ने, उहनां दा जिन्ना हैंड स्किल्स होगा, उहनां नूं एक्सपीरियंस होगा किन्ना, तां उस बेसिस ते उहनां नूं नौकरी मिल जाती है।
1: तुसीं गल विदेशां दी कीती है,
0: हाँ
1: विदेशां दे
0: जी।
1: विच अग्गे पढ़न लई मौके मिलदे हैं जां उहनां नूं अग्गे इस कोर्स दे आधार ते उत्थे जाके कम्म मिल जांदा है?
0: नहीं, कम मिल जाता है बेशक, उन्हां नूं रोजगार मिलता है विदेशां दे विच।
1: अच्छा जी,
0: जिवें असीं जदों गल करदे आ जिहड़े आईटीआई होल्डर्स ने, इन्हां दा मिडल ईस्ट कंट्रीज, जिन्हां नूं असीं गल्फ कंट्रीज भी बोल देने, उहनां दे विच बड़ी डिमांड है, जिदां सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया,
1: हाँ
0: बहरीन
1: जी,
0: हो गया, कतार हो गया, ओमान, इदां दे जिहड़े गल्फ कंट्रीज है उहनां दे विच बड़ी ज्यादा मात्रा दे विच वैकेंसियां निकलदियां ने
1: अच्छा जी,
0: आईटीआई होल्डर्स दे लई, तां उहदे लई इह बच्चे जिहड़े आ अप्लाई कर सकदे आ। इस दी मोरओवर काफी जिहड़ी इमीग्रेशन जिहड़ियां कंपनीज ने ओह कम भी करदियां ने, जिहड़े के कह दिंदे आ कि ओह डायरेक्ट वर्किंग वीजा जिहड़ा ओह मंगवा के दिंदे आ, और इहदे विच कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आंदा बच्चे दा,
1: अच्छा
0: तकरीबन
1: जी,
0: तुसीं लगा लो 50 तो 60 हजार या 70 हजार तक दा खर्चा आ जांदा होगा बच्चे दा।
1: अच्छा जी,
0: ते गल्फ कंट्रीज च जाण लई बच्चे नूं मोरओवर जिहड़ी आईलेट्स वगैरह है ओह भी करन दी जरूरत नहीं पैंदी हैगी।
1: अच्छा जी, फिर उत्थे आमदन किन्नी
0: हाँ
1: क हुंदी
0: जी।
1: है इहनां दी?
0: आमदन इन्हां दी काफी हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि इन्हां नूं किद्दां दी कंपनी दे विच हायर किया जा रहा है।
1: अच्छा
0: आमदन
1: जी,
0: दे नाल नाल एक होर जिहड़ी चीज एड अप हो जाती है उत्थे जाके, वो है कि उत्थे जाके बच्चों का जिहड़ा प्रोग्रेस है
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: काफी तेजी नाल हो जाती है। जे वो घट आमदन ते भी शुरुआत करते ने तां वो घट्टो घट 6 महीने दे विच उन्हां दा काफी अच्छा पैकेज बन जाता है।
1: अच्छा जी,
0: ते इस तो इलावा अगर बच्चे चाहन तां वो वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, जेहड़ा मतलब ऑस्ट्रेलिया या फिर कैनेडा दे बड़ा बच्चे जाते हैं कि असीं उत्थे जाना है, तां
1: हाँ
0: उहदे
1: जी,
0: लई भी अप्लाई कर सकते ने आईटीआई तों बाद। ते
1: उत्थे वर्क परमिट ते जाणगे जां स्टडी बेस ते?
0: नहीं, उत्थे जाण लई इन्हां नूं थोड़ा जा ए चीज है कि जिदा बच्चों नूं ना परमानेंट रेजिडेंस दे थ्रू ही जा सकते ने, उहदे लई इन्हां नूं पीआर लई ही अप्लाई करना पऊगा। वर्क
1: अच्छा
0: परमिट
1: जी,
0: दे थ्रू भी जाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसी कंपनी नूं रिक्वायरमेंट, उन्हें रिक्वायरमेंट जदों निकलदी है, बट उत्थे ना इन्नी बल्क दे विच रिक्वायरमेंट नहीं निकलदी, जिदा गल्फ कंट्रीज दे विच 1000 दी भी निकल जांदी है इको टाइम दे विच,
1: अच्छा
0: तां
1: जी,
0: उस अकॉर्डिंगली जिद्दां डिमांड हुई उद्दां उन्हां तों ओह फॉर्म भरवा सकदे भरे जा सकदे आ। ते उहदे लई इन्हां नूं आइल्स दे 5.5 बैंड भी चाहीदे होणगे बच्चियां नूं कैनेडा वगैरह वर्गियां कंट्रीज दे लई।
1: अच्छा जी,
0: हां जी।
1: तुसीं दस्सिया भी ये कोर्स करके प्राइवेट खेत्र दे विच नौकरियां मिलदियां, सरकारी
0: बिल्कुल
1: खेत्र च नौकरियां मिल सकदियां,
0: बिल्कुल जी।
1: जिहड़ा हैगा
0: हां जी, मैं
1: एक
0: सरकारी
1: नौजवान
0: सेक्टर पर ए
1: विदेशां दे विच भी जाके
0: जी
1: पढ़ाई कर सकदा है जां को जिहड़ा हैगा भी कम कर सकदा है, उस बेरोजगार भी अपना सकदा है,
0: हाँ
1: इहदा
0: जी
1: मतलब कम दे काफ़ी मौके ने इधर।
0: बिल्कुल, काफी बहुत ही एक डिमांडिंग कह सकते हैं अजकल दे टाइम दे विच इस ट्रेड नूं, इस इन्हां कोर्सेज नूं असीं बड़ा डिमांडिंग हैगे ने।
1: अच्छा जी,
0: बट इन्हां दी एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चे नूं प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस उन्हों थ्रेटिकल दोनों